0: कमाल दा कैसी यार, यकीन ही नहीं होंदा।
1: तिनु इधर तो यकीन नहीं होंदा। तू ए सुन, सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहने, जे तुहाडे घर विच इलेक्ट्रिक जा ऑयल हीटिंग है।
0: इस गल ते मैनु पूरा यकीन है, वो ते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने, ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते वो ऑयल टैंक के फ्रीज बार कर देंगे, नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक घटा सकदे ने।
1: तेनु इस सब किमे पता?
0: क्योंकि मैं भी पिछले साल लगवाया है।
1: अच्छा, वेबसाइट ते नाम की दस्सी सी?
0: saveonenergy.ca/eap

सतगुर होई दयाल तसरदा पूरी है, सतगुर होई दयाल नकब हूँ चूरी है, सतगुर होई दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुर होई दयाल ता हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: IQ, Fashion IQ, Latest Design, Trending Outfits,
1: लेडीज सूट, लहंगे, गरारे, शरारे,
0: कुर्ते, पजामे, शेरवानिया, कोट पैंट, ब्लेजर अते किड्स फैशन,
1: विंटेज ते सफारी लगेज सेट्स दी वड्डी कलेक्शन, थीम वेडिंग ले टॉप टेलर टीम भी अवेलेबल, फैशन आईक्यू, फैशन आईक्यू, हुने कॉल करो 9054533225 या गूगल ते सर्च करो फैशन आईक्यू, स्पेशल गिफ्ट ले रेडियो उड़ान दा रेफरेंस देना ना भूलियो।
2: देखो जी करता है अपना नंबर वन पर मेरा दिल करता है अपना घर सारे तो सोना हो भी
3: बस इन्नी गल।

क्या बात है, वेरी गुड। देखो ये वीडियो भी बड़ी सोहनी बनी है यार भैब, पता नहीं किस साल दी गल है, बट क्या एक्टिंग, क्या नखरे, क्या अंदाज। सो प्रोग्राम पंजाबी लहरा 905-673-3333 नंबर अपना 905-673-3333 दे उत्ते गलबात थोड़ी ते साड़ी हो रही है 905-673-3333। सो एक मैं थोनों मैसेज जरूर जरूर पी एंड जे रेनोवेशन दे प्रशांत बाई दा दवा। देखो बेसमेंट तैयार करवानी है, वाशरूम तुसी रेनोवेट करवाना, कोई भी घर का निका मोटा भी रेनोवेशन का काम है तो प्रशांत नू याद रखो, पी एंड जे रेनोवेशन कोई शॉर्टकट नहीं, सॉलिड काम है। नंबर है 4373180400 प्रशांत 437-318-0400 प्रशांत नाल करो गल, ते बहुत ही सोहना रेनोवेशन का काम। तुसी आपको ही नवी यार पता लगता कि बंदे ने क्वालिटी का काम किया। उस तो अलावा GTA क्रेडिट दे रेखा ते नदीम, जे सिर कर्जा चढ़ गया जादे थोनू टेंशन है, टेंशन छड्डो, तुसी GTA क्रेडिट नू कॉल करो। पिछले 25 सालां तों कर्जा माफ करवा रहे ने, ते GTA क्रेडिट दा तुसी नंबर नोट कर लो, नंबर है 416-650-1100 दे उत्ते कॉल करो, ते GTA क्रेडिट दी टीम हाजिर है। अगर किसी ने भी कर्जा माफ करवाना 416-650-1100 ते घुमाओ फोन ते करो तुसी GTA क्रेडिट दी टीम दे नाल मुलाकात, ते रेखा नदीम भी थोड़े लिए बिल्कुल अवेलेबल ने। तुसी सुनी अज गल, एक कपल कैनेडा आए, कुछ भी नहीं सी पहला, हुण लॉटरी जीते 70 मिलियन डॉलर दी, वाह। एक बंदा कहिंदा मैं अपनी वाइफ नूं मदरस डे दे लई लॉटरी टिकट लैके दित्ती, कहिंदे सानूं हो बहुत चिर गया इत्थे पर असी जदों दे आए हां लॉटरी खेड रहे हां, मेहनत दे नाल असी जिंदगी जी है, सेविंगां कीतियां ने, कदे आई नहीं कि कोई बड़े फालतू दे खर्चे किते। ते जदों लॉटो मैक्स क्विक पिक टिकट ऑर्डरी है ना, ते लई टिकट, ऐ लग्या कहिंदे वी जदों असी रिजॉल्ट चैक कीता कि सिर्फ $70 बने आ, फिर बंदे ने फिर देखिया कहिंदा नहीं तू फिर देख जीरो किन्ने आ, ते जदों देखिया 70 मिलियन, बंदा कहिंदा मैं तां 2-4 बार फिर टिकट देखी, उह तां देखणी आ भरावा 70 मिलियन तां तू तेरे गाहां जिन्ना परिवार आ सारे सैटल आ। जिहड़ी लेडी आ कहिंदी मैं तां बस बैठ ते ही छाला मारी गई, मैनूं तां समझ नहीं लगे कि हो की गया। सो चलो मुबारकां होण 70 मिलियन, क्या बात है क्या बात है। या तो होवे कोई यार 70,000-7 मिलियन भी मान लिया चलो, वह भी बहुत वड्डी गल है, बट 70-70 मिलियन डॉलर जित के बंदा आप करते होंने ना डिस्कशन, आप बहुत बार टॉपिक किया कि आए करांगे उमे करांगे, 70 मिलियन दे नाल तां यार तुसी सारी दुनिया घूम लो, एक बार नहीं तुसी दुनिया भावें 5-7 बार घूम लो फिर भी नहीं 70 मिलियन मुकदा। चलो ऑडरी विलिस जे सुन रहे हो प्रोग्राम नू, बहुत मुबारक थोनू, ते हैव अ गुड लाइफ, एंजॉय करो ते बहुत बल्ले बल्ले ते थोड़ी बह जा बह जा। सो प्रोग्राम पंजाबी रहा, नंबर है अपना 905-673-3333 स्टूडियो दा। मैं जो भी ना ये डिस्कशन आप करते होंने हमेशा पुछीदा कि जे तुसी जितदे इन्ना पैसा तो की कर दे, बहुत सारे लोग कहिंदे हुंदे आ भाजी कुछ नहीं जी असी तो बस डोनेट करांगे ये करांगे वो करांगे। मैं हसदा हुंदा मैं कहिंदा इदां ना करया करो यार, मैनूं पता थोड़ा डोनेट

टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देंगे पंजाबी विरसा 2026 टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नो थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: Entertainment 647-400-6862-416-303-4444. ये तो शो नो मिस करना चाहोगे?
1: ओए ट्रक काला लिया जदो वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा
2: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
3: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवर्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
4: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
2: कॉल करो जे एंड गैरी नू
4: 905-459-5533
2: 905-459-5533 ते
4: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
0: ओंटारियो गुरुद्वारा कमेटी पेश करदे ने सिख गेम्स कनाडा जुलाई 31 तो 3 अगस्त तक ओपनिंग सेरेमनी सैटरडे अगस्त 1 सवेरे 9 बजे ब्रैम्पटन सॉकर सेंटर विखे सॉकर कबड्डी फील्ड हॉकी वॉलीबॉल बास्केटबॉल वेटलिफ्टिंग गतका वधेरे जानकारी लई sikhgamescanada.ca ते जाओ जा कॉल करो 647-807-0007 इन गेम्स दी एंट्री बिल्कुल मुफ्त है।

0: Supersize, jump our size, grow our size, happy size, not a toasty beast. Bole, sonny hall, social call.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, RE/MAX Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: कमाल दा कैसे यार यकीन ही नहीं होता
2: तेनू इधर तो यकीन नहीं होता तू ए सुन सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहने जे तुहाडे घर विच इलेक्ट्रिक जा ऑयल हीटिंग है
1: इस गल ते मेनू पूरा यकीन है ओते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते वो ऑयल टैंक भी फ्री च बाहर कर देंगे नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक घटा सकदे ने
2: ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ
1: ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ
2: ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
1: save on energy.ca/EAP

0: सो गाज उस पर परमेश्वर के नाम ऊट आसरना, जिसके नाम ऊट आसरना आगाज दुनिया की रक्षा दा। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरपौ निर्वैर रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे। एक बार फिर तो दुनिया के सब तो खूबसूरत मुल्कों खूबसूरत जगह तो तुसी इतने सुन रहे हो सानू, अमेरिका और कैनेडा के, इस समय पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी के एरिए एम 530 डिजिटल फ्रीकुएंसी जिते सुना जाता है, उत्थे ओंटारियो दे विच तुसी सानू सब तो वध कवरेज वाली फ्रीकुएंसी के तौर के उत्ते किचनर वॉटलो कैम्ब्रिज लंडन या सारनिया होंदे हुए, या तुसी वुडस्टॉक तो ब्रेंटफर्ड पैरिस सिमको, या तुसी जो सानू हैमिल्टन तो नैगरा फॉल दे बॉर्डर तक सुनते हो, जी टी ए एंटार दे विच और गोल्फ तो लैके तुसी सानू बेलविल तक, और बेलविल तो लैके न्यूटनविल होंदे हुए तुसी सानू न्यू कैसल क्रॉस करके कोबर्ग तक सुनते हो, नॉर्थ ईस्ट दे विच सानू तुसी हाईवे 7 जो ऑटवा नू जांदा 115 हाईवे दी गल करदा मैं, 115 हाईवे दे उपर सानू तुसी सुनते हो लिंजी पीटरब्रो तक, और नॉर्थ दे विच सानू बैरी तो स्टार्ट हो जांदा 11 हाईवे और 400 हाईवे दे नॉर्थ तक भी सानू तुसी ओवन साउंड ओरिलिए तक सुनते हैगे हो, और हाईवे 10 विंगम तो लैके तुसी टोबरमरी और बहुत सारा एरिया जिहड़ा मैनिटोलन आइलैंड दा हैगा उत्थे भी एम 530 नूं सुणदे हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं पीटसन रिपोर्ट का ट्रैक 6 जिथे एयर कैनेडा मूरला चक्का तहन चक चुकी है, ते तुसी आसमान च देखोगे मैं ट्रैक ते भज्जी जांदी देख रहा। सो उत्थे ही 401 सन नज़र आउंदा हुंदा ईस्ट बाउंड वैसट बाउंड मूविंग वैल टूवर्ड्स जिहड़ा हैगा मॉन्ट्रियल और लंडन पीटसन एयरपोर्ट दे एरिए दे विच, ते डेरी रोड दे उपर बड़ा वधिया ट्रैफिक। इस समय एम्पायर ट्रांसपोर्ट का ट्रक मेरे मूहरों लंघ गया हैगा, मेरे मूहरों एयर टाइम्स लंघ गया हैगा, ते तुहानू सारयां नू बहुत बहुत बहुत प्यार के माँ धरती है तेरी गोद नू चन होर वथेरे तू मगदा रही हो एक सूर जा कमियां दे वेड़े, बहुत सारिया तकलीफा कमियां दे बावजूद चढ़दी कला नाल निरपौ निरवैर असी इस समय अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सो अज दे दिन दे विच आप सब दा हार्दिक स्वागत, 9-17 स्टूडियो घड़े दे तो हो चुके ने कुछ अज दे शो दे विच, असी बाबा बखतौरा नां दा एक सैगमेंट आ उह तुहाडे नाल साझा करांगे। बाबा बखतौरा ते मेरे नाल संतोष जी तो पहुंच चुके ने, संतोष जी की हाल चाल ने तुहाडे, सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल सारे रेडियो लिसनर्स नू, चढ़दी कला जी। अमन जी बहुत वधिया गल कही तुसी बाबा बखतौरा, मैनू 3 मैसेजेस आ चुके आ कि बाबा बखतौरा जी किथे गए
0: होए आ। ओ वाओ, के बाबा बखतौरा जी वापस आ गए, वेकेशन ते गए हो सीगे, छुट्टियां दे पैकेज दे विच उन्हां नू फ्री मिली सी 3 दिन दी वेकेशन।
1: बिलकुल सही है।
0: सो सारे नाल असी गल करांगे बाबा बखतौरा दे विच, उत्थे नाल नाल एक ना फिल्म आई सी हाथी मेरे साथी। सो अपने बहुत सारे साथी होंदे ने जिवें फ्रैश ग्रोसरी डिपो, उन्हां दे विचों आ फ्रैश ग्रोसरी डिपो दा मैसेज आ, ऑन एयर दावा रौला पई चलो प्याजां दे गंढियां दा, बैग पहलां 6 दा मिलदा सी हुण 10 दा मिलण लग गया, फलाना आटा पहलां 12 दा मिलदा सी हुण 17 दा मिलण लग गया। फ्रैश ग्रोसरी डिपो कहिंदे महंगाई नाल दुश्मनी, होलसेल परचेज 10,000 स्क्वेयर फुट दी लोकेशन विटवी ते ओशवा बॉनवेल, तुसी लिंजी पीटरब्रो या तुसी इस समय ईस्ट दे किसी भी शहर दे विच बैठे हो, बहुत सारे शहरों सानू सुना जा रहा हैगा, वर्थ टू ड्राइव ते दूसरी लोकेशन ब्रैम्पटन डाउनटाउन दे विच है। सो इस समय सॉरी ब्रैम्पटन जो है स्प्रिंगडेल दे विच है, 31 स्टेपल बुश दे उत्ते तुसी पहुंच सकदे हो। विच ऑन एयर तुसी दिओ मैसेज अपना।
2: हाँ जी अमन भाजी सत श्री अकाल, और सारे लिसनर नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सो बिल्कुल थर्सडे आ गया जी, अपना फ्लायर साडा फ्लिप दे उत्ते नवा जिहड़ा अपलोड हो जांदा है जी, जिहदे विच नवीं नवीं डील्स हमेशा ही लैके आउने आ। सो इस बार भी स्पैशल दे विच आटे लगे हुए ने जी, 2 तरह दे आटे ने, हांडी होल वीट फ्रैश चक्की आटा और इहदे नाल नाल लक्ष्मी चक्की फ्रैश आटा, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਤੋਂ 18 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ 13 ਡਾਲਰ। ਸੋ $5 ਆਫ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਬੈਗ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ ਔਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਸਿਰਫ 19.99 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਨੀਮਮ $30 ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, 27 ਤੋਂ 30 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ $20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $7 ਤੋਂ $10 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਵਾਘ ਬੱਕਰੀ ਚਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 16 to 17 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਡਾਲਰ ਚ। ਸੋ ਜਾਣੀ 6 to 7 ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਬੈਗ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਇਹਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ 18 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਜਾਂ 16 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੈਗ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 14 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡਿਪੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 3.99 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 pounds ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰ ਆ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਆਫ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫਲਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਸਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 23.99 $24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਨਾਨਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 1.6 kg, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 30 to 32 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, 31 ਸਟੀਪਲ ਵੋਸ਼ ਐਵਨਿਊ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 905-458-1300, 905-458-1300। ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਡਰਹਮ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 1618 ਡੰਡਾਸ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਵਿਟਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੰਡਾਸ ਔਰ ਥਿਕਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ 1618 ਡੰਡਾਸ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਵਿਟਬੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 905-556-1651, 905-556-1651। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ, ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ, ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨਵਾ ਜੀ।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ 905-600-73-33-37 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ।

0: ਲੋ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ.
1: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, Remax Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
2: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा.
3: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है.
2: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं. अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं.
3: तुम्हें ये सब कैसे पता?
2: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है.
3: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
2: saveonenergy.ca/EAP.
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
5: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ,
6: ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ,
5: ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ,
6: ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ,
5: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ,
6: ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ,
5: ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ,
6: ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ,
5: ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ.

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुन चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वदिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers
3: कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੈਨਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਅਪਰੂਵਲ ਫਾਸਟ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-524-3535 416-524-3535 ਵਿਦੇਸ਼ ਆਪਰਾ ਫਰਮ ਪਲੈਨਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
4: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशा तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे डॉक्टर कुमार लेडीज के मर्दों के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा माल्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो
0: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए GTA में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808 Indian Fruitland 905-456-9900
4: रेव सिंह कैनेडियन जंपल साडा अपना रियल्टर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री काट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बाद फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर देने रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट राइटर रेव सिंह दी तिखी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचने दे खरीदने विच तुहाडी हेल्प कर सकदी है नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नु फोन करो 647-740-9600 647-740-9600 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲਟਰ ਰੈਵ ਸਿੰਘ

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
1: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो, इको ही ना, अते इको ही था, CIC Immigration, हुणे ही Call करो, 456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: ऐसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
3: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
4: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416